0: याद आए बुलाते बुलाते, बहुत याद आए बुलाते बुलाते, तुम्हें जिंदगी से बुलाते बुलाते।
1: Ακούτε ραδιογράμμα.